नमस्कार। बिहान 7 बजे को आधी खोला खबर में प्रविधि कक्ष अशोक संग यहां स्वागत आरती कुंवर संघ जिला को पहिलो आवाज रेडियो आधी खोला को समाचारमूलक प्रस्तुति आधी खोला खबर एफएम 105.4 मेगाहर्ज र www.radioadikhola.org बाट नमस्कार। बिहान 7 बजे को आधी खोला खबर में प्रविधि

0: एस आदि फ्लाक हबार को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार चैंसा
1: रेडियो आदि खोला 105.4।

0: रेडियो आदि खोला 105.4 मेगाहर्ज।
1: साधारण सभा एवं अधिवेशनमा उपस्थित हुने बारे वालिम उद्योग वाणिज्य संघको सूचना।
2: यही जेठ 10 गते बसेको कार्य समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस वालिम उद्योग वाणिज्य संघको 19 साधारण सभा तथा 9 अधिवेशन कार्यक्रम निम्न मिति समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिताको लागि सादर अनुरोध गर्दछौ।
1: मिति असार 12 गते शुक्रबार,
2: समय दिउँसो ठिक 12:30 बजेदेखि।
1: स्थान वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्य सामुदायिक सभा हल सिटी हल।
2: अनुरोधक वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ वालिङ साइन्जा।
3: अनि पानी कागज के मिथिवा आ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबदि पर्सनल मोबाइल नम्बर मि उनीयो टेलिकमर बे अफिसरी आइर ब्लक लैर खनखाई। अनि बैंगरी बैंगरी आ सर चाहिँ तले लगपर्दि समनल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न बैंक देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खातै न जानकारी अरु न योरी थनी बेक्या सचेत तल परिम
2: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिना
4: सिद्धार्थ बैंक क्याले जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
5: हतार हतारमा छोराको बिहे आटियो, अरू सबै व्यवस्था मिल्यो तर अब सुनका गरगहनाको व्यवस्था
3: तले लग पर्दि समनल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थनी

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: पहले हम लोग अनिमा 10 बजे था।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।